0: मतलब प्याला मेरा भर दे साकी।
1: बातें बेटा बातें।
0: सुबह और शाम से गाफिल मुझे कर दे साकी।
2: छी छी छी छी।

0: यार,
1: तुमने बदला लिया है।
2: बदला भी लिया है और ये भी बताने आया है अब की बार मेरा माल पकड़वाएगा, हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा।
1: Son of a bitch.

आज वो दौर आ गया है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ से भी थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं, लेकिन ये आशा जी की आवाज़ है जिससे लगातार सुनते रहने पर भी हम सब लोगों का लगाव बढ़ता ही जाता है। हमारी आशा जी जिनकी गायकी में हजारों रूप लेकिन व्यक्तित्व का रूप एक, जैसा अंदर वैसा बाहर, गुस्सा है तो गुस्सा, प्यार है तो प्यार, दिल जितना बड़ा उतना ही साफ।